0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरिलाई।
1: राप्ती इंजीनियरिंग कॉलेज घोराही दांग को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना।
2: स्थापना को पहिलो ब्याचमै इंजीनियरिंग कार्यक्रम तर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ पांचौ ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल ग्रीनविच विश्वविद्यालय लन्डन कलेज रीडर्स नेपाल द्वारा सम्मानित र नेपाल एजुकेशन अवार्ड जापान अस्ट्रेलिया तथा यूएई द्वारा पुरस्कृत लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट यस कलेजमा बीबीए बीसीए बीई कम्प्यूटर र बीई सिभिल कार्यक्रममा नयाँ भर्ना खुलेकाले पढ्न इच्छुक विद्यार्थीले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला।
1: प्रवेश परीक्षा चौबीस गते सम्पर्क राप्ती इंजीनियरिंग कलेज घोराही दाङ।
2: फोन नम्बर 082-562-601 98578-35990 98578-31684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्यूटर इंजीनियरिंग र 18 महिने अमिन कार्यक्रममा केही सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला।

0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट 2700 में खरीद गर्दा फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सब कनेक्टेड
1: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज।

0: कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी खाइ नाइस
0: अडगुरी
2: राप्ती इंजीनियरिंग कॉलेज घोराही दांग को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना

0: प्रदेश के उत्कृष्ट यस कलेज में बीबीए बीसीए बीई कंप्यूटर र बीई सिविल कार्यक्रम में नया भर्ना खुलेकाले पढ्न इच्छुक विद्यार्थीले तुरंत संपर्क गर्नुहोला।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते संपर्क राप्ती इंजीनियरिंग कलेज घोराही दांग।
0: फोन नंबर 082-562-601 98578-3590 98578-3184 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्यूटर इंजीनियरिंग र 18 महीने अमिन कार्यक्रम में केही सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले छिटो संपर्क गर्नुहोला।
2: हीरा काटने हीरे मा राखे।
3: नमस्ते, म रामकृष्ण ढकाल। तपाई सुन्नुहुन्छ तपाईको आफ्नै रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्ज।

राम राम सन्जे 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर में शारीक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। तुलसीपुर क्षेत्र में आज राप्ती गैस 390 सिलिण्डर वितरण कर्जिटिवा ईंधन डिपो कार्यालय तुलसीपुर का प्रमुख विनोद बस्नेत का अनुसार तुलसीपुर क्षेत्र में अलग उक्त परिमार्ग राप्ती गैस विभिन्न पसल तथा सप्लायर्स से वितरण कर्जिना हो रहा सल्याण रोड मरलक न्यू सगरमाथा गैस सप्लायर्स थाना 50 थान भूसान गैस सप्लायर्स थाना 60 थान ओम इंटरप्राइजेस कलाक 50 थान खनाल इंटरप्राइजेस पर्सनी कलाक 50 थान सल्याण रोड में रलक न्यू पंचकोशी इंटरप्राइज कलाक 30 थान वेलकम सप्लायर्स उरहरी कलाक 50 थान अन्नपूर्ण ग्रोसिटी स्टोर रक्षा चौर से 50 थान गैस सिलिण्डर वितरण कर्जिना हो रहा वितरण सूची अनुसार गैस विक्रेता मार्फत उपभोक्ता गैस उपलब्ध कराजिना हो लखो संबंधित गैस विक्रेता से अपन कोटा अनुसार उपभोक्ता सहज और व्यवस्थित रूप में गैस वितरण करना जना गिल बा। तुलसीपुर क्षेत्र में लम्बा समय से खाना पकिना गैस अभाव हुई उपभोक्ताओं को नक्ला शास्ती हुई बा। ज्ञान सिन्धु कलेज आप लौ व्यवस्थापन का साथ तुलसीपुर स्थित डिभाइन एजुकेशन फाउण्डेशन को मातहत में संचालन हुना हो रहा लम्बा समय से घोराई क्षेत्र में संचालित ई कलेज लौ व्यवस्थापन में लागिलक हो। हाल ई कलेज तुलसीपुर स्थित डिभाइन टेम्पल कलेज एकेडेमी का नवनिर्मित आधुनिक संरचना से संचालन हुईना बटवागिल बा। जयकर्मा कलेज से भोजराज न्यूपाने प्रमुख में ओ टेकन प्रसाद कडेल सहायक प्रमुख में नियुक्त करगिल बा। आज आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में कैंपस का प्रमुख सलाहकार डाक्टर विष्णु कुमार देवकोटा से नवनियुक्त प्रमुख निपाने पदभार ग्रहण करा गिल्लखुट पदभार ग्रहण करते निपाने से कलेज हन गुणस्तरीय ओ व्यवहारमुखी शिक्षा का केन्द्र बनाईना ओ व्यवस्थापन संकाय हन लघु सोच का साथ अघाड़ी बढ़ीना प्रतिबद्धता व्यक्त करल रह। कलेज का अध्यक्ष युवराज रात के अनुसार ज्ञान सिन्धु हन जिला को जो उत्कृष्ट शैक्षिक गंतव्य बनीना ओ व्यवस्थापन संकाय अध्ययन का विद्यार्थी बाहर जाई पर्ना अवस्था का अंत्य करना लक्ष्य धैकिल बा। आप नर्सरी से बीबीएस सम्म का पढ़ाई एक कठो संस्था अंतर्गत हुईना व्यवस्था मिलागिल बा। सरकार से मुक्त कमलहरी विद्यार्थी कलाग स्नातक तहसम केल छात्रवृत्ति का व्यवस्था करल पास स्नातकोत्तर तह का शिक्षा हासिल करना सपना आर्थिक अभाव का कारण अधूरे रहना अवस्था देखिल बा। स्नातक उत्तीर्ण कैकन धूर मुक्त कमधरी विद्यार्थी स्नातकोत्तर अध्ययन कर चाहे फे आर्थिक स्रोत का अभाव से पढ़ाई रोकना बाध्य हुई रहल बा। दांग गढ़वा गांवपालिका 4 टैंकी रूमा चौधरी एकर प्रतिनिधि पात्र हुईटे आर्थिक अभाव के कारण वहां से स्नातकोत्तर तह पर निपैना बटुआ रखले। मुक्त कमलहरी अभियंता उर्मिला चौधरी का अनुसार अखिल लागू करगिलक छात्रवृत्ति कार्यविधि समयानुकूल नि हो। करीब एक दशक अघाड़ी बनलक कार्यविधि अनुसार अखिल फे पुराना दर में छात्रवृत्ति वितरण हुई रहलक। वहां का काहीबाट वहां से कार्यविधि संशोधन कईकन छात्रवृत्ति का रकम यथार्थपरक बनाई पर्ना घटी। स्नातकोत्तर तह में अध्ययन करना मुक्त कमलहरी विद्यार्थी नफे छात्रवृत्ति का व्यवस्था कर पर्ना माग कई रख ली माग न अगाड़ी सर्ते मुक्त कमलहरी विकास मंच से लुम्बिनी प्रदेश सरकार का मंत्री तथा संबंधित निकाय से शिक्षा और स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित कर आग्रह कई रखल। मंच का अनुसार कुछ मुक्त कमलहरी विद्यार्थी सिकल सेल थायराइड लगायत दीर्घ रोग से पीड़ित बाट उपचार का पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुए हुकन का पढ़ाई प्रभावित हुई रहल बा। लुम्बिनी प्रदेश का मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य से अनुदान को रासायनिक मल वितरण में समान ओ स्पष्ट नीति बनेकला ओ खाद्यान्न बाली सहित उखु केरा ओ मकई खेती करना किसान हन प्राथमिकता में धैकन वितरण प्रक्रिया व्यवस्थापन कर निर्देशन दे रख। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय में काल हुईना छलफल में वहां से कार्यविधि तैयार करबेर वास्तविक किसान का आवश्यकता और बाली का प्रकृति आधार बनाई पर्ना बटुलट बाली वितरण बाली परिवर्तन करना किसान से समय में जो रासायनिक मल निपैना अवस्था रलक उल्लेख करते यहां समाधान करना कईकन वितरण प्रणाली सुधार कर कईकन नीति निर्माण कर्जिना बटुआ रखल। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्रालय का सचिव डाक्टर नीतू पंडित से देशभर वार्षिक करीब 14 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ना हुई सफे आसे धूर कम मात्रा में हुईना केल मल उपलब्ध हुईना करल बा। उखु मकई ओ केरा खेती में समेत आवश्यक मात्रा
रासायनिक मल उपलब्ध गरिना विषयमा संघीय कृषि मन्त्रालयसे समन्वय गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहल। छलफलमा उखु बालिक किसानसे रासायनिक मल तथा कृषि औजारमा नीतिगत समस्या झेल्ती ऐलक बटुती खाद्यान्न बालिक किसान सरह सुविधा उपलब्ध गराइ पर्ना विषय उठान गरिल रह। ओ बजारमा खाना पकिना एलपी ग्यासका फेर अभाव हो रहल। मध्यपूर्वको तनावसे गैलका फागुन नर चैत्र फागुन र चैत्रमा ग्यासका अभाव भोगलक उपभोक्तासे अखि फेर सहज रूपमा ग्यास पाइ निसेक्न हुलेकोट नेपाल आयल निगमसे कोटा अनुसार ग्यासका अभाव आयात नियमित भित्रलक दावी करलसे फे उपभोक्ता ग्यासकलाक लाइन लग्न ओ पाला कुरो पर्न बाध्यता बा ग्यास सहजै पाइ निसेक्लक हप्ता दश दिन हो स्याकल बा यसैघारी आधा सिलिण्डर ग्यास दे तिरलक आयल निगमसे गैलक असार 31 गते यहाँ फेर भर सिलिण्डर बजारमा पठिन शुरू हुल पाछ समस्या शुरू हो रहल। 81 भर ग्यास सिलिण्डरको माग भरबेर बजार असहज हुलक निगमको प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुर बटवा रखल। गुइठा त आजुक थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंजाफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्षको सक्कु संग्रहणसँग म शालिक राम चौधरी विदाई टू रेडियो मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरी लाई।
1: नमस्ते दाई भाउजू, होइन घरमा त हालै ठोकेर कता हिँड्न लाग्नु भएको?
2: नमस्ते नमस्ते,
3: कता हिँड्नु नि बाबु? बजारतिर नि
4: अङ्कल, मलाई साइकल किन्न, मैले बाबुलाई बसालेर स्कुल जाने।
5: साइकल चढेर
6: के गर्ने बाबु? छोराले साइकल साइकल

0: मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोही कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिसियन, हाड जोड्ने, नसा, प्रसूति, रेडियोलोजी।

0: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाक बन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जड़ीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा
1: गुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड गुराहीदान फोन नम्बर 082-581-210 थप सम्पर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ
2: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि
3: वरिष्ठ हाट जोड्ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा
4: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू
3: हात खुट्टा भाँचिएको हात खुट्टा झमझमाउने ढाड कमर दुख्ने हाड जोडिङ सम्बन्धी अपरेशन सेवा
5: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा
6: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
7: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा
5: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
7: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा
5: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा साथै इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिस्टोस्कोपी इको कल्पोस्कोपी सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू
2: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई दाङ फोन नम्बर 082-583-218